जी हाँ, ये थे नुसरत फतेह अली खां साहब, मजबूत दिल के शहंशाह कव्वाल, जिनकी आवाज उन्हें हजारों के दिल को दीवाना कर दिया। हुज वॉइस टच्ड मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज उनकी 49th बरसी है। 16 अगस्त 1997 में वो इस दुनिया से चल बसे थे। तो अल्लाह ताला उनको आला दर्जा दे जन्नत का, उनकी मगफिरत करे, ये हमारी दुआ है। महीना है रबीउल अव्वल का और चांद निकल चुका है रबीउल अव्वल का, आज 3 तारीख है। तो ये अगला कलाम, ये चांद रबीउल अव्वल का।

बेशक यह है महीना रबी उल अव्वल का 1448 का रबी उल महीना आ चुका है. महीना है दरूद पाक का, महीना है हमारे आका के मिलाद का, और ये महीना है जिसे स्प्रिंग कहते हैं. तो ये रबी उल अव्वल का महीना है. अगला कलाम है आमिना कलाल अनस रजा तारी साहब की आवाज़ में.

बेशक रबीउल महीना इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है और सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस मुबारक महीने में हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद हुई। इस महीने मुसलमान दुनिया भर में उनकी पैदाइश का जश्न मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बिदा है और कुछ लोग कहते हैं हमें मनाना चाहिए, तो ये अपनी अपनी सोच का है और हमें ये देखना है कि हम उनकी सुन्नतों पर चले। और उनकी जो सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि हम मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, नफ़रतों को हमारे दिलों से निकाल दें, ये सबसे बड़ी सुन्नत है। तो अगला कलाम है साद और हादी साहब की आवाज़ में, या नबी।

बेशक धड़कन, जब नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ लोग सुनते थे तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। शहनशाह कव्वाल, और जब इन्होंने फिल्मों में गाने लगे तो फिल्मों में भी धूम मच गई थी। मैसेज आया मेरी प्यारी बहन, भूल गई मैं, फाली कर रहे वो तो वो कहती है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम। मुमताज़ पालेकर, मेरी प्यारी बहन मुमताज़ पालेकर, जो कहती है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम एंड सिलेक्शन ऑफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान स्पेशली सेकेंड डे ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। अ ट्रू टैलेंटेड जेंटलमैन, अ ट्रू टैलेंटेड जेंटल जायंट, मे अल्लाह सुब्हान तआला ग्रांट ऑल मरहूम्स एंड मकफिरत एंड जन्नत अल फिरदौस आमीन, सेफ होम। और फिर और एक मैसेज आया है जो कहती हैं शी इज़ इंजॉइंग द प्रोग्राम, फातिमा रोई का, वो भी प्रोग्राम इंजॉय कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ आपा और फातिमा आपा, आपकी दुआओं का, आपकी हौसला अफजाई का। अगला ही गज़ल भी हमने ली है नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, आफरीन आफरीन।

16 अगस्त 2026 और 3 रबीउल अव्वल 1448 29वीं बरसी नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, और ये प्रोग्राम हमने खास उनके लिए ट्रिब्यूट के तौर पे पेश किया। तो अगला कलाम, अब क्या सोचे क्या होना है।

बेशक अब क्या सोचे क्या होना है जो होगा अच्छा होगा. काफी लोगों का ये फेवरेट कलाम है, मेरा भी बहुत ही फेवरेट कलाम है. बेशक अल्लाह ताला इंसाफ का, भलाई का और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों और बुराई और जुल्म से रोकता है. वो खुद तुम्हें नसीहत करता है और ताकि तुम नसीहत हासिल करो. इसी पैगाम के साथ मैं सुफिया दलवी रुखसत चाहती हूँ. तकरीबन 9:45 हो चुके हैं. मेरी प्यारी बहन रशीदा मौजिक का मैसेज आया है. सलाम बना लेजेंड दैट विल ऑलवेज बी लव्ड फॉर हिज मेमोरेबल स्पेशली सूफी सॉन्ग्स. ही लेफ्ट बिहाइंड ब्यूटिफुल लेगेसी दैट सो मेनी पीपल यंग एंड ओल्ड एंड इवन नॉन मुस्लिम स्टिल एंजॉय अराउंड द वर्ल्ड. माय लेट हस्बैंड्स फेवरेट आर्टिस्ट. आई एम थॉरली एंजॉयिंग द ट्रिब्यूट फॉर द लेजेंड. मे अल्लाह ग्रांट हिम द हाईएस्ट सपोर्ट इन जन्नत. शुक्रन रेडियो 786. जज़ाकअल्लाह खैर आपकी दुआओं का. फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का. इट मीन्स अ लॉट टू अस. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे हार्ड वर्किंग टेक्नीशियन शब्बीर जेकब्स का, जो बहुत मेहनत करते हैं. हिज डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड वेल डन शब्बीर.

एंड वेल डन शब्बीर, और आपकी दुआएं भी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद आप सुनेंगे मेरे मन फकीर हो जा तेरे बाद कोई अपना नहीं, और अली मौला के एक मनकबत होगी मुज्तबा अजीज की आवाज़ में, और सलामी होगी ऐसा माँ मुस्तफ़ा से कह देना। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, शब खैर, जज़ाकल्लाह खैर।

बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। हमारे अशरफ भाई मोती कोरल वाले तशरीफ फरमा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। इनकी मोहब्बत है हमारे नसीर बाबू तशरीफ फरमा है। खरगामा वाले हमारे कादर भाई और भूरा भाई, संखेड़ा वाले और हमारे जावेद शेख अमोट वाला इवेंट जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत लोगों में मुझे रूबरू होने का मौका मिला। तवज्जो इस शेर पर, खास तवज्जो अशरफ भाई बाबू सभी ने तवज्जो। ऐसे तो मेरे नौजवान जो भाई बैठे हैं, एक बार मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का जोश। नारा हैदरी, इसी जोश के साथ दोस्तों ये शेर सुन रहे हैं। हाय हाय, ऐसे तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है मेरे मौलानी ने, मगर दोस्तों ये कुर्बानी मुलायदा कीजिए, तवज्जो।

वक्त को देखते हुए दो शेर और पेश कर रहा हूं दोस्तों के सब सब सहाबा से बढ़कर मिला है मेरे मौला अली को। क्या मिला है, क्या मिला है,